अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

चरण संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे talent बहुत rarely मिलता है. बहुत respect में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

0: या पप्पू के पास है MBA, करता है फ्रांस में हॉलीडे। पप्पू का नौ गिटार स्पेले, गिटार बजाता है। मैं यहाँ इन दिन का नहीं नीत है कहानी डांस। या पप्पू कैन डांस
1: आला।
0: Ja, velo kanaam heet Janetou, ja Janina uit het jaar 2008 is dit alweer heel wat jaren geleden, maar nog steeds heerlijk om naar te luisteren. Ja, en weer leuk om eventjes uit de kast te halen, al het stof er vanaf te blazen en dan weer op je playlist te gooien. Je hoort het hier bij Ujala, Ujala Radio, Orwobi Amit Jaramkesat. MUZIEK

मेरी जिंदगी का पहला हसीन तू ख्वाब बन गई हो प्यार बन गई हो. Ja, prachtig mooi nummer. Dat was de stem van Setje Tenden samen met Parampara Tenden on the vocals.

खाली दिल नहीं जान भी है मंगदा। अलका जी एंड हंसराज हंस, फिल्म का नाम कच्चे धागे। उजाला रेडियो है, ऑन टेलीफोन नंबर 020-409-0807। और अगला गीत प्रोग्राम में जो आप सुनेंगे तो होंगे अब रूना लैला की आवाज में, पेश है

न्यू जन रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

हमारे प्यारे सुनमलो उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे, हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से बहुत ही दुलार से वेलकम वेलकम। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और हमारा फोन का नंबर है 920-409-0807 पर आप लोग तार कर सके हैं। हर एक काम काज के लिए बेहतरीन पता

और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज का प्रोग्राम में जो गाने हम आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, कुछ बेहतरीन बेहतरीन गाने जो आप लोग सुनेंगे। पहला गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, राहत

लाल तेरे बिन नए लगदा और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी और हमारे प्यारे चैनल उजाला रेडियो के सारी दुनिया पर आप लोग सुनते हैं, चाहे यहाँ पर आप लोग सुनेंगे, चाहे जिस कोना में आप लोग सुनते हैं, हम आप सभी को बहुत ही प्यार से स्वागत कर रहा हूँ। कोई कोई कोई गाना तो जरूर से हो जो आपका पसंद हो।

और इसी तरह से अति सुंदर गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, और आशा है कि आप सभी सुनने वालों को भी हमारा प्रोग्राम भी पसंद आते होंगे।

यू आर उजाला रेडियो, हमारे प्यारे सुनो लो, और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं। जो भी आपको पूछना हो, जानना हो, जरूर से आप लोग तार कीजिए।

चल वेल यार बन जा रानी तू मेरी, मैं दुनिया हिला दूंगा यार, बन जा ना तू मेरी रानी, मैं दुनिया हिला दूंगा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे और आशा है कि आप लोग को भी पसंद आए होंगे।

वल तुम मेरे हो मेरे रहना, इस तरह से जुबिन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आई एम द बेस्ट यू आर द बेस्ट यार। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और गाने वाले होंगे अभिजीत एन अलका याग्निक की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

यार मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और इस तरह से अभिजीत है नल का याग्निक के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे अलका याग्निक ने इस बार साथ देने वाली है एसपी बालासुब्रमण्यम के आवाज में गाना पेश है। फिल्म का नाम साजन और गाना इस तरह से आप लोग सुनेंगे।

वेल यार, देखा है पहली बार सनम जानम के आंखों में प्यार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार यार। अलका याग्निक एसपी बाल सुमनियम के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों। और चलिए अब की बार गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे अनुराधा पॉल वाले एंड कुमार सानू जी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना यार।

से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, खास करके अनुराधा पौलवल एंड कुमार सानू जी के आवाज में, यू आर उजाला रेडियो।

वेल यार, हम तो दीवाने हुए यार, अब तो तेरे हुए यार। और इस तरह से खास करके अभिजीत नाल का याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, इस बार उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी के आवाज में सुन ले ई गनवा।

तू सो जाए मैं जागूं, राम करे कहीं ऐसा हो जाए कि मैं जागूं और तुम सो जाए, राम करे कहीं ऐसा हो जाए। मुकेश जी की आवाज और फिल्म मिलन का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने।

धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया। हाँ, धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो क्या बात है। धूल का फूल फिल्म से गीत को आप सुने, फिल्म धूल का फूल। हाँ, और गीत के गाने वाले महेंद्र कपूर एंड आशा जी। और अब लता जी के साथ सुनिए मुकेश जी की आवाज में एक गीत।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: and roll.
1: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: सच

ये है उजाला रेडियो, यहां म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खातिर।

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार मुंगार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 81 साल के आयु में एनन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती सोनिया बख्तावर मुंगार के पति लड़कन महेंद्र गीता दत्त मनोज गुरदत्त और बेटी मुंगार के पिता चार पतो और एक दामाद के ससुर सभी लड़कन के आजा नाना पर नाना और पर आजा। आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान बिसुंदत मुंगार के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले फरलैंड हानास्लुस्टवेख का रहने वाला था। आम्स्टरडम से परिवार मुंगार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए सोमवार को 81 साल के आयु में एनन तख्त ख्यार औत पत्नी श्रीमती सोनिया बख्तावर मुंगार के पति लड़कन महेंद्र गीता दत्त मनोज गुरदत्त और बेटी मुंगार के पिता चार पतो एक दामाद के ससुर और सभी लड़कन के आजा पर आजा नाना और पर नाना। आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान बिसुंदत मुंगार के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले फरलैंड हानास्लुस्टवेख का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार की रात में 7 बजे से 8 बजे तक फ्रेडहाफन फन जीवन तोत आख्तूर उत्फार्ट सेंट्रम वेस्टगार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 4 बजे से जातदाख मेदाख फीर उर किए जाएंगे। वेस्टगार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 20 05 03 55 06 20 05 03 55। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार मुंगार के दुख में शामिल है।

ये उजाला रेडियो है। नवरात्र के उपलक्ष पर सुनने वालों, एक विशेष प्रोग्राम को आप लोग अब सुनेंगे। और प्रोग्राम का इस भाग हम लोग बना सकेंगे अम्स्टर्डम जोयतो से अपोतेक द ड्रीफ के मदद से। यहाँ पर है अपोतेकर शांति रामशरण और कर्मचारियों, इन लोगों की तरफ से नवरात्र के शुभकामना आप तक पहुंचे।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, नवरात्र के उपलक्ष पर आप अब प्रवचन सुनेंगे और ये है मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम राम लोचन तिवारी जी के।

मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उजाला रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों को जय अम्बे, जय जगदम्बे। और बड़ी ही खुशी की बात है कि पूरा समाज, देश, विश्व, सभी जगह पर नवरात्रि की बहुत ही खुशी के साथ, श्रद्धा के साथ, पूजन में, अर्चन, जप तप में, व्रत में लोग लगे हुए हैं। और ये सुअवसर हमें आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होती है। अतः इस अवसर पर तो आदि शक्ति माता के चरणों में सत सत नमन है ही, साथ साथ इस प्रचार प्रसार को आप तक पहुंचाने वाले उजाला रेडियो के सभी सदस्य कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत बधाई कि जो वो समय समय पर ये शुभ अवसर भी हमें प्रदान करता है। आइए आदि शक्ति माता जगदम्बा की पुराण में, वेद में, उपनिषद में बहुत ही लंबा चौड़ा व्याख्या किया गया है। साथ साथ वेद के कई ऋचाओं में भी भगवती को स्मरण किया गया है और उन्हीं ऋचाओं के मंत्रों को हमारे यहाँ पर देवी भागवत महापुराण के नाम से या मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण में सप्तसती के नाम से, उपनिषदों में भी आदि शक्ति माता की जो है इसी तरह से स्मरण किया गया है। इन सभी में एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस शक्ति को पहचान सकें जो हमारे और आपके भीतर है, जो विश्व में है, जिसकी कृपा से हम और आप सब कुछ करने की शक्ति रखते हैं, पाने की इच्छा रखते हैं और कुछ देने की शक्ति रखते हैं। ये सब करुणामयी माता दुर्गा की जो है तो कृपा है। नवरात्रि के आज हम लोग शुभ अवसर पर ये पांचवा दिवस है और पांचवी रात्रि। इस पांचवें दिवस पर नव दुर्गा की पूजन में आदि शक्ति माता दुर्गा की जो पांचवी रूप है, जिसको हमारे यहाँ पर स्कंद माता के नाम से याद किया गया, तो स्कंद माता के स्वरूप का वर्णन देवी भागवत महापुराण में बताया गया है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया सुब्दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जो स्कंद, स्कंद माने कार्तिकेय, कार्तिकेय एक नाम स्कंद है, कार्तिकेय के एक नाम कुमार है, कार्तिकेय के एक नाम शिखी है, योगेश्वर है, कई नामों से उनको याद किया गया है, मयूर वाहन भी है। तो यहाँ पर स्कंद का तात्पर्य है भगवान शिव और माँ पार्वती के जो पुत्र हैं वे है स्कंद माता, स्कंद कुमार।
तो यहाँ पर भगवती के जो रूप का वर्णन किया गया है उसमें यही है कि जो कार्तिकेय की माँ है और उसका जो स्वरूप है, तो प्रार्थना में उनको पद्माश्रित भी कहा गया है और सिंहासन गता भी कहा गया है। तो पद्म पर भी विराजमान है, माने कमल के फूल पर भी और सिंह के पीठ पर भी। ऐसे सिंह के पीठ पर विराजमान भगवती स्कंद माता, जिसके दाहिने जो चार भुजाओं से युक्त है उसके दाहिने तरफ के नीचे के हाथ में स्कंद कुमार है, दाहिने तरफ के ऊपर के हाथ में कमल के फूल हैं, बावे तरफ के ऊपर के हाथ में कमल की फूल हैं और नीचे के हाथ अभय मुद्रा है। ऐसे भगवती स्कंद माता की स्वरूप है जो हमारे यहाँ पर योग साधना में पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र में जिसकी स्थान है। आदि शक्ति भगवती स्कंद माता के पूजन से, जप तप से भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण होता है, वह परम शांति और सुख का अनुभव करने लगता है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के नाते रोज जो सूर्य की प्रकाश को हम देखते हैं वे स्कंद माता की आभा है, उसी की शक्ति है, उसी की प्रकाश है। जिस तरह से कल के प्रवचन में हमने सुना कि भगवती कुष्मांड देवी सूर्य के भीतर की जो प्रकाश है उसमें निवास करने वाली देवी है, स्कंद माता सूर्य के बाहर की जो प्रकाश है उसमें निवास करती है। ऐसे स्कंद माता हमारे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आज के इस रात्रि में हम भगवती स्कंद माता की ध्यान पूजन अर्चन प्रार्थना करें। आज के ही रात्रि में बहुत ही जरूरी है कि भगवती की जो एक रूप है ललिता उसका हम ध्यान करें और हो सके तो आज जरूर 108 बार थोड़ा थोड़ा कम गुलाब के फूल रोज के पंखुड़ियाँ उसको प्लविज करके उसके एक एक टुकड़ा को हम भगवती के चरणों में अर्पण करें। तो जो लोग दुर्गा के 108 नाम को जानते हो वे एक एक नाम से, और अगर जो नाम पता नहीं है 108 तो कोई बात नहीं है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये वीच्छये इस मंत्र से, और या तो ओम ह्रीं दुं दुर्गायै नमः इस मंत्र से एक एक फूल को भगवती के चरणों में अर्पण करें और ये प्रार्थना करें कि माता की कृपा से, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की कृपा से हमें यह अवसर मिला है कि नवरात्रि की इस व्रत को हम कर सकें और धीरे धीरे आज हम पांचवी रात्रि पर पहुँचे। माँ जगदम्बा की कृपा।

और प्रिय सुनने वालों, अभी प्रवचन आप सुने नवरात्र के उपलक्ष्य पर हमारे मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम रामलोचन तिवारी जी के जरिए। पंडित जी को हम सबकी तरफ से कहिए उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

नवरात्र के उपलक्ष्य पर सुनने वालों, एक विशेष प्रोग्राम को आप सुने और यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। प्रोग्राम को हम लोग बना सके अम्स्टर्डम जायतो से अपोतेक द द्रीफ से अपोतेकर शांति रामशरण और कर्मचारियों के मदद से। इन लोगों की तरफ से नवरात्र के उपलक्ष्य पर शुभकामना बधाइयां स्वीकार कीजिए। हम लोगों की तरफ से धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों की मदद से प्रोग्राम हम लोग बना

उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको जो भी कामकाज दिलाना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.net

0: होठों पे सच्चाई रहती है,
1: जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।